0: 92.7 FM के गए और सिरी 93.7 FM की नो नहीं बेटर चेक कर वन जस्ट टाइम राइट नाउ वी गेट 7 मोर मिनट्स और मेक दैट 8 आफ्टर 4 o'clock
1: Heart FM
0: we got Taylor Swift coming through this next song is brought to you by Duncan Pasalubong na Bayan